0: पाता सोई सुहावा था। जब तक नेड़ ना आवई रसना हर गुड़का, सेवा शुद्ध न जानिया ना जप आराध। गुट उठे सब कुछ पाया जन नानक सत बलिहार। कौड़ी महला पंजवा सुके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव।
1: Glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 स्पिन बैक कॉल कीजिए 9054567733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: पाई प्रभ सात शीतल पय की नी प्रभ दात, प्रभ कृपा ते पय सुहेले।

0: you go again.
1: Up Monday is Bob Roder Dogs, Horse and Sweet Factory and all new grocery stores.
2: जाके दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा करेक हर हर अखर मन महलेक रव रहे सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी नौरी महला पंजमा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संत सुनाहे पीवत राम रस अमृत तुण जास जब हर

निर्मल गुण गाव नित नीत, गई ब्याज उभरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना ध्याई।

कर हारियो अनेक पाव पाती छोटे कत होना ही एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सत कमाया जीत ले ओए महा बिखाती सहज सोहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्बाणी मोरत महला पंजवा कर स्नान सिमर रब अपना मन तन पए अरोगा कोट बिगड़ लाते प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी सब सुभाख्या गावह सुन हो पढ़ो नित पाई गुरपुरा पूरा क्या रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत प्याला संता की पैज रखदा आया आद बिरद व्रत पाला पर अन पुंजो सर्व वेला मुख पावह चरम राणा अपना गुरु गोविंद नमः सुनी अरदास स्वामी मेरे

ग्रहकारिणी कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोऽहं पाठे त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठे कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदम्।

0: बाखा सब हर करे सब काम सफल हनुमान।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए अभी फॉल का सीजन चल रहा है, तो फॉल में आपके लिए बड़े सुंदर, बहुत खूबसूरत वातावरण हो जाता है, स्पेशली नॉर्थ में। तो आपको अगर मौका मिलता है वहां जाने का और ऐसे दृश्य देखने का, तो आप जरूर ड्राइव की करके जाइएगा अप नॉर्थ एंड सी द ब्यूटी। तो आप जैसे हर साल मेरे साल जरूर जाते होंगे, देखते होंगे, तो आपको बड़ा आनंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये तो साल में एक बार ही ऐसा मौका आपको मिलता है कि आप जाओ और देखो। अब आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया सी आपको बढ़िया बढ़िया आपको घर में सामान लेके आना है, तो आपको बढ़िया टीवी चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन गणेश उत्सव से आप जानते हैं कि शुरू हो जाता है, तो आपको बढ़िया सामान आपके घर में लेके आना है, सुंदर सुंदर चीजें अपने घर में लेके आनी है। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और उनकी दूसरी लोकेशन ग्वालपुर है। तो फेस्टिव सीजन से पहले पहले ही आप अपने घर में ये सारी चीजें ले आइएगा, बढ़िया सा टीवी ले आइएगा, और दिवाली के लिए अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया बढ़िया सामान बिल्कुल समय पे आपको जैसे आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आपके लिए घर संसार जो है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो आपके लिए अगर आपने फेस्टिव सीजन में अपना बिजनेस प्रमोट करना है, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647773। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आपको अपने ऑर्डर बुक करने हैं तो आप 905-799-0042 पर कॉल करो, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग, तो मूविंग के लिए अपनी सारी जो इतना सारा मूविंग कोई आसान चीज नहीं होती है, तो इसको आसान बनाते हैं आपके लिए एचके मूवर्स। तो आप एचके मूवर्स को आज ही कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। अब इलेक्शंस अक्टूबर 26 को होने वाले हैं, तो आपके लिए अगर इलेक्शन में आपने वोटिंग, तो आपको अपना हक है तो आप जरूर वोट कीजिएगा। तो थॉरल्ड में साद महमूद हैं, वो काउंसलर के रेस में आगे आए हैं, पर अपनी कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं, यहाँ पे नियाग्रा आसपास के इलाके में तो खूब लोगों की सेवा करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन स्टैंड करता है बढ़िया, तो साद यहाँ से थॉरल से हैं आपके लिए। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से साथ। अब अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे ते विश्वास कारण असीं लैके आए हां कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड ईटोबी को। मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया सामान लेना है, फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया रेट पे मिलता है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। तो अब आपके लिए योगी ऑटो सेंटर हैमिल्टन में मौजूद है।
2: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे। कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आपके लिए अगर आपने हैमिल्टन में रहते हो, आपने कार खरीदी है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विसेज हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए लोकेशन है। तो आपके लिए हैमिल्टन में आपने अगर गाड़ी खरीदी है, तो आपको बहुत बढ़िया गाड़ी आपके लिए वहाँ पे मिलेगी। पहले आपको गीत सुनाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप अगर कोई गाना सुनना चाहते हो अपनी पसंद का, तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हो 6477737640 पे कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए ड्राइविंग, तो आप रोज करते हैं काम पे, हाँ जी। तो ये जो ड्राइविंग में क्या होता है जी, थोड़ी सी जगह, 2 इंच की जगह हो तो लोग आगे आपके घुस जाते हैं। तो उसमें जो आगे एकदम आके घुस जाते हैं, तो बाकी सभी जो पीछे लोग होते हैं उनकी टाइमिंग सारी वो खराब कर देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे देखा नियाग्रा फॉल में थॉरल स्टोन से जो है एग्जिट ना QEW में, जब आप टोरंटो में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो पीछे ट्रक आ रहे होते हैं, क्योंकि बॉर्डर है ना, तो लोग देखते नहीं या चेक नहीं करते हैं, इसलिए फिर बहुत सारी बड़े ध्यान से आपको लेन चेंज करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि मैंने खुद देखा कि एक शायद कोई थे, उनका उन्होंने चेक नहीं किया और ट्रक आ रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था ना, बहुत ही बढ़िया ट्रक ड्राइवर था, तो उसने क्या किया कि ट्रक को रोक लिया है ना, बहुत कोशिश की उसने रोकने की, फिर भी जो वैन वाले आगे थे, थोड़ी सी मैंने देखा कि थोड़ी सी उनकी जो वैन थी वो टच हो गई उनके साथ ना, तो इसलिए पता नहीं। अब कई बार मैं भी जब ऊपर वो QEW लेती हूँ, तो फिर ऐसे कई बार बड़ा ध्यान बिना देखे चलने की जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मिरर चेक करती हूँ, तो देखती हूँ कि पीछे ट्रक था, तो इसलिए आप बड़ा ध्यान से जब की हुई रवि किसी भी हाईवे पर चलते हैं।

0: मुझे कैसा लगा इनको, तो बड़ी मस्ती है कि बातें में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है जी, जरूर बताइएगा, क्योंकि बताने से ही पता चलता है। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है, या फिर आपने कोई बढ़िया सी आपके लिए टीवी चाहिए, किचन गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया फर्नीचर लेना है, सोफा सेट लेना है, तो आपको जाना है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक आप .com पर जाइए, तो फिर आपको वहां पे बढ़िया बढ़िया डील्स मिलेंगी, तो फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए। तो 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। और अगर आपने अभी तक आपका मूविंग होनी है, तो मूविंग के लिए अगर आपको मदद चाहिए, तो HK मूवर्स को आप कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए, तो आपके मूविंग की सारी प्रोसेस को उनकी ऐसे ऐसे टीम्स हैं, बढ़िया टीम्स हैं, वो आपकी सारी मूविंग को बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए। तो 416-524-804। अब अगर आप लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हो, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे, तो आप उनको mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी आप ले लो, तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सर्विस मिलेगी और बढ़िया आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही कहा मैंने आपको। तो आज ही आप उनका, अगर आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो वालों को इसकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आइए आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।
1: अजूबे इस दुनिया में आज मैं अपनी जोड़ी

जी हाँ, तो याद आ गई आपको फिल्म धर्मवीर धर्मिंदा जी की फिल्म, बड़ी हिट मूवी थी। जीना तमान थे, जितेंद्र थे इसमें, तो कमाल की मूवी थी ये। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिए। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो ता अज ही पहुंचो बीबीटी रोक ले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके 1,00,000 डॉलर तक, ते फाइनेंस की चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.4.9% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर दी लोड है तो ओह वी मिलणगे। 4 टायर दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੋਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। ਬੀਬੀਟੀ ਰੋਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਲੰਡਨ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गर्भ संसार में। अगर आप हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक खुले फाटो हैमिल्टन, थोड़ा अपना लोकल कार डीलरशिप इतने ही है हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हैं, सिर्फ 500-5000 तो लैके 1 लाख डॉलर तक। तो फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लब्भण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर दी लोड़ है तो ओह वी मिलणगे। चार टायर दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर। जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340, दोबारा सुनो 365-384-3340। बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको एक और ऐसे ही एक भूला बिसरा सा प्यारा सा गीत सुनाती हूँ आपको। जरूर मैं पक्का यकीन रखती हूँ आपको ये गाना पसंद आएगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद है ये गाना, आपको भी जरूर बहुत पसंद आएगा। सुनिए।

के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा।

में जब पितर पक्ष हो रहा है उसमें क्या होता है कि हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर एक पूर्वज का हर फली में अलग अलग दिन होता है, तो उस दिन हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं पूजा पाठ उनका धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो पूर्णिमा जो है खास पूर्णिमा है कि क्योंकि मून केक्स बनाए जाते हैं चाइनीज में, तो इसका ये जो पूर्णिमा होती है बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो नियाग्रा फॉल में खास करके इसका महत्व है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इस वीकेंड में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मून का व्यू है वो अलग होता है तो अच्छे से देता है। तभी जब वो डार्क टाइम हुआ था तो मिलियंस ऑफ लोग नियाग्रा फॉल आए थे उसको देखने के लिए। तो आइए अब हमारे प्रोग्राम का समय जो है तकरीबन की तरफ है, लेकिन रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाता पला है। वंडरफुल डे। हैव अ सेफ वन।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

जन्म जन्म के किल बेख दुख उतारे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाव जीवन बिरथा।

0: और मेरे नाल ब्रिजी, ब्रिजी कैसे हैं आप?
1: ऑलवेज
0: चार्टिकला
1: ग्रेट।
0: सो ब्रिजी, बाहर हमारी बॉडी पे स्किन सूख रही है, चोरनिया पड़ रही है या कुछ हो रहा है, हमें पता लग जाता है
1: जी।
0: कोई स्वेलिंग आ गई हमें बाहर से पता लगती है,
1: कोई
0: सोचे साहब बॉडी में अंदर क्या चल रहा है नहीं पता लगता। आगे हकीम होते थे, हकीम बोलते थे जब बुरा हकीम मिल गया कि नीम हकीम खतराए जान, कोई माड़ा हकीम मिल गया थोड़ी जान को खतरा हो सकता है
1: जी।
0: सो हकीम नब्ज पकड़ते थे, लोगों को बता देते थे क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको ऐसी क्या बख्शिश है कि आप किसी की बॉडी को टच करके बता देते हो कि क्या हो रहा है?
1: जरूर
0: बताइए
1: जी। हमको अभी दिस इज माई 19th ईयर एक्सपीरियंस।
0: तो हाथ आपकी बैकग्राउंड बताएं क्या है?
1: आई डिड माई नॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वैद्य, यू नो ट्रेडिशनल आयुर्वेद
0: वैद्य थे वो,
1: वैद्य
0: दादाजी।
1: या जी
0: ठीक है। सो अच्छा ठीक है,
1: सो बचपन से आयुर्वेद हमारा ब्लड में है।
0: हाँ।
1: तो ट्रीटमेंट करने के टाइम जी व्हेन आई टच द बॉडी वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट द
0: प्रॉब्लम। आदमी कितने साल तो सो नहीं पा रहा है प्रॉपर्ली,
2: फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स,
0: जो जो बंदे का बात बता रहे थे?
1: हाँ, हाँ चार साल है जी।
0: चार साल तो बंदा सो नहीं पा रहा है?
1: नहीं जी।
0: पैसा ज्यादा आ गया क्या चक्कर था?
1: वो आईटी में था, वो अभी काम भी नहीं कर रहे।
0: ठीक है,
2: इतना प्रॉब्लम।
1: हाँ,
0: अब कितने दिनों के सो रहे?
1: ऑन द थर्ड डे।
0: थर्ड डे कितनी थेरेपी के बाद?
1: थर्ड सेक्शन शिरोधारा की है।
0: शिरोधारा तीन सेक्शन तो बाद वो बंदा सोन लगा।
2: अच्छा, वेरी नाइस।
0: सो थर्ड आई होंगी साढ़े दिमाग के बिचाले, जी मत्थे के बिचाले जगह होंगी आईब्रोज के बिचाले, उरे ते वो थेरेपीज करते हैं तेल के राही, तेल सटते उपरों, तो बंदा रिलैक्स हो जाता। कहता ठीक है, सेहत पहला। ब्रिजी को निकल के बंदा कार च बह के, कार तो लगे घर तक जब तक नहाँ कहता सेहत पहला, नहाने तो बाद फिर हो जाए बंदा। बंदे है ना। सो ब्रिजी अपना नंबर दीजिए।
1: 6476191369 6476191369
0: 6476191369 किसी ने भी किसी भी तरह की बॉडी च कॉम्प्लीकेशन है कोई आ रहा बाहरों, ब्रिजी के क्लीनिक से जाके देखो, थोनों सुकून तो राहत मिल जूगी। राहत फतेह अली खान तुम वीडियो या एडियो च देख सकते हो, ब्रिजी के कोलो राहत तुम लेके जा सकते हो। कि लिमिटेड स्पॉट्स खाली ने, कितने स्पॉट खाली?
1: लिमिटेड स्पॉट्स आर अवेलेबल टुडे एंड टुमारो।
0: टुडे एंड टुमारो। ब्रिजी आपको चार साल हो गए मेरे साथ?
1: ऊपर
0: ऊपर हो गया। ऐड करते हो आप और कहीं ऐड करते हैं?
1: नहीं।
0: अप्रोक्सीमेट कितने लोगों को मिले होंगे?
1: मैसेज थोड़ा चेक करने के टाइम आई थिंक नियर अबाउट 3000
0: 3000 लोग तो मिले हूं तक रेडियो।
1: हां जी।
0: सो तुसी ये मानते हो ना कि पंजाबी लोगों के कॉम्प्लिकेशंस है ना, कि सेहत का ख्याल नहीं रख रहे
1: जी,
0: है ना हमारी कम्युनिटी में
1: जी।
0: सो तुसी प्लीज सारे कॉल करो। आज कितने अपॉइंटमेंट है?
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल है जी,
0: आज और कल।
1: आज और कल।
0: हाँ, लेडी हो भी कोई, मेल हो भी फीमेल हो भी, दोनों कॉल कर लियो
1: जी।
0: लेडीज वास्ते औरत है जी, वो थेरेपिस्ट कर दी है, ये थोड़े बॉडी नू गर्म पोटलियां दे नाल मालिश दे नाल ते सिर ते तेल पाके ते एक इन्हां दी मैं उच बैनर ना मशीन च क्या बोलते उसको
1: स्वेदन, आयुर्वेदिक मेडिकेटेड डिटॉक्सिफिकेशन।
0: इट्स अ स्टीम। हां, पसीना उच्ची होता होता होता नहीं वा।
1: या इट्स अ हर्बल स्टीम।
0: क्या पसीना कोई प्रॉब्लम आई ते होता वैसे नहीं होता
2: या दौड़न ते
0: तो होता नहीं। सो तुसी ब्रिजी नू कॉल करना, ब्रिजी नंबर
1: 6476191369
0: 6476191369
1: जी
0: 6476191369 647-619-1369 647-619-1369 647-619-1369 ते ब्रिजी नू कॉल कर लो, मालिश वास्ते अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच ब्रिजी।
1: थैंक यू
0: सो मच। सो मेरे नाल यादविंदर है। यादविंदर सत श्री अकाल जी, की हाल है?
3: हां सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, किवें हो?
3: हां जी ठीक है जी, ठीक है, वधिया जी।
0: अच्छा यादविंदर, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?
3: ਹਾਂਜੀ,
0: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?
3: ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
0: ਤੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ?
3: ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਬਸ।
0: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਗੇਅਰ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਓਕੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ
2: ਜੀ
0: ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ 3 ਸੋਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
2: ਹਾਂਜੀ,
0: ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ $10 ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਾ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਜੇ ਕੱਟਦੇ, ਮੈਂ $1500 ਖਰਚ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਿਹਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਮ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਫੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਯਿੰਗ ਪਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਐਸ ਜੀ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲਨੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ?
3: ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 6477051317।
0: ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਯਿੰਗ ਪਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕੱਟਿਆ ਆਈਆਂ ਕੱਟੇ ਹੱਸਦਾ
3: ਹਾਂਜੀ
0: ਹੱਸਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਫਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਦੂਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੋਗੇ?
3: ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੰਨ ਲਾ ਖੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
0: ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਆਪਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਟਿੰਗ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਸਟਮ ਸੋਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। 647-1313 ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 6477051317। ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬੁਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਔਰ 647-1313 6477051317 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ।

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी ता याद रखो इको ना बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इना कोल है पंज धड़लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवांदे ने वध तो वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम हुण तक मिलियंस डॉलर तक दी सेटलमेंट करा चुकी है ते पैसे सेटलमेंट तो बाद ही चार्ज करदे ने आज ही कॉल करो रूपा बराड़पुरा नु 416-991-4169915939 बराड़

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों, आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डॉलर बचाइए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होण, चाहे ग्रैंड फर्नीचर होण। छोटे वड्डा समान वेचदे आ, जिहड़ी स्क्रीन हुंदी आ जी ते टीवी देखदे आ ओह वेचदे आ
1: जी,
0: लेकिन रेगुलर टीवी भी वेचदे आ,
1: बिलकुल
0: लॉन्ड्री भी वेचदे आ
1: जी।
0: छोटे तो छोटा जिहड़ा टेलीविजन आ, किसे ने ऑफिस ऑफिस च लाउणा हुंदा
1: जी,
0: ओ किन्ने कदा मिल जांदा जी?
1: इस टाइम जे राइट नाउ आपां गल करिए जी, फिर 55 इंच इस टाइम स्टॉक च है,
0: ठीक है,
1: 50 और 40 इंच जेड़े सोल्ड आउट है।
0: अच्छा जी,
1: हां जी, ते जे कोई लेना चाहुंदे कस्टमर ते मैं डेफिनेटली उहनां नूं 55 इंच 399 च दे दूं।
0: साहब जी 55 इंच 399
1: दा ऑफिस च लाओ, नाले बिग स्क्रीन है, नाले 399 ओनली।
0: लो जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस वालों ऐलान कर दिता गया 55 इंच दा ब्रांड न्यू डब्बे च बंद टेलीविजन सिर्फ 399 दा।
1: ते जे कोई 65 इंच लेना चाहुंदे
0: आ, हां जी,
1: $100 होर पाउन, किन्ने बने $100 पा?
0: 499 65 इंच टेलीविजन 499 दा। ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस
1: ते और ये सारे ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड डब्बे च बंद मिलनगे, गूगल फीचर्स दे नाल है। गूगल मीन्स के इहदे च तुहानूं ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसीं डाउनलोड कर सकदे हो, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, 1 year पार्ट्स एंड लेबर वारंटी इंक्लूड इन द प्राइस। 55 इंच 399 ते 65 इंच 499।
0: वाह क्या बात। अच्छा 75 इंच, चलो
1: बिल्कुल 65 तो उपर 75 है। 75 वैसे जेड़ा ना जी टैरिफ लगी प्राइस है 1099 पर, साडे कोल 3 या 4 टीवी इन स्टॉक है, सिर्फ 799 ओनली
0: 75
1: इंच मिलेगा,
0: 75 इंच
1: सैमसंग दा,
0: ठीक है।
1: दे जे 85 इंच लेना जी,
0: हां जी,
1: ते साडे कोल 85 इंच 1399, सिर्फ 1399।
0: सारा जो समान है टैरिफ तो पहला वाला समान तुहानू दिता जा रहा है, लै लो जाके। टैरिफ दे बाद वाला जो समान ऑर्डर आने आ, जिहड़े इन्हां ने ऑर्डर किए हुए, उदो जिहड़ी प्राइस आ वध जाणी है।
1: टैरिफ लगी प्राइस इहदी $1800 है जी।
0: अच्छा
1: 85 इंच कोई भी लैणगे 1799, या कोई सेल लगी भी ते 1699 तो घट नहीं मिलना,
0: ठीक है।
1: पर 1399 दा ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते कुछ एक टीवी इन स्टॉक है, पिकअप करना पिकअप कर लो तद भी 6 महीने ची पे करना, डिलीवर कराना डिलीवर करा लो तद भी 6 महीने ची पे करना। 905-450-2828 नंबर है, ते फिर बिग स्क्रीन जो 85 की गल करते हैं तो आ जाता 98 इंच।
0: अच्छा जी,
1: एदी भी टैरिफ लगी प्राइस $2600 है, पर 1999 दा ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते ए कोई 5-4 टीवी नहीं, सिर्फ 2 टीवी स्टॉक च,
0: ठीक है।
1: टू लकी कस्टमर कैन गेट इट 98 इंच सैमसंग ओनली 1999। पहुंचना किथे है तुसी? 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com साडी वैबसाइट है। 905-450-2828 नंबर है, ते मैं गल्ला करदे करदे हुणी मैसेज कीता सी जी अपने स्टोर ते,
0: जी जी,
1: 40 इंच भी 3 पए है।
0: अच्छा
1: 199 च 40 इंच लै लो,
0: 40 इंच 199 च 40 इंच टीवी जी, 199
1: यस,
0: $199 च 40 इंच दा मिल रहा है ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते। ए भी तुसी जे 199 चाहुंदे हो 6 महीने देणे ओ भी कर लियो,
1: बिल्कुल नो प्रॉब्लम।
0: 905-450-2828
1: टीवी कोई भी तुसी लेना, चाहे तुसी OLED देख रहे हो, चाहे तुसी QLED देख रहे हो, चाहे तुसी मिनी LED देख रहे हो, चाहे तुसी सोनी ब्रेविया मॉडल देख रहे हो, जरूर विजिट करना। 32 इंच तो लग के 98 इंच तक ऑल साइज ऑफ टीवी इन स्टॉक है जी, ते जेड़े स्टॉक छे है वो तुहानू एटलीस्ट 600-800 की सेविंग होएगी, क्योंकि कई बार कस्टमर चाहते हैं के बेस्ट टीवी होवे, OLED टीवी होवे, डिस्काउंटेड प्राइस ते होवे, तद भी तुसी प्राइस चेक कर लेना। जेडे असी प्राइस अनाउंस कर रहे हैं ओदे लई तां बिल्कुल राइट वे क्विक एक्ट करियो, क्योंकि ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ।
0: ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ।
1: ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਓ, ਪੇਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 40 ਇੰਚ 199, 55 ਇੰਚ 399, 65 ਇੰਚ 499, 75 ਇੰਚ 799, 85 ਇੰਚ 1399 ਤੇ 98 ਇੰਚ 1999 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ .com ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ APP। ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ
0: ਜੀ।
1: ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਚ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਿਕਲੇਗਾ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਲੈਪਟਾਪ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਚ ਜੇ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ APP, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ APP,
0: ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ .com ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਚਾਹੇ ਲਾਂਡਰੀ ਚ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਫਰਿੱਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 98 ਇੰਚ ਤੱਕ ਐਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ, 905-450-2828, 905-450-2828।

सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो बस जिद पर अड़ तो सही। जब सहना खुद को है तो बता कि तुम्हारा तमाशा क्यों करना इस बात का। लाइफ इज टू शॉर्ट एंड टू स्वीट एंड मेक इट टू स्वीट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी च प्रॉब्लम सब दे आती है। यानी कि थोड़ी जिंदगी च प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरा बंदा बहुत खुश है, देखने विच बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम का मतलब है स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम का मतलब है ग्रोथ, प्रॉब्लम का मतलब है सक्सेस। हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन होता है। सो नोट, वर्क ऑन प्रॉब्लम, वर्क ऑन सिचुएशन एंड सोल्यूशन। एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर एक प्यारा जहा खूबसूरत जहा गीत थोड़ी नज़र लेके असी हाजिर होवांगे। तुसी भी कोई गीत संगीत सुनना चाहते हो तो 416-233-7368 या फिर 416-910-6000 इज द नंबर टू कॉल। रियल एस्टेट की गलबात होएगी, मॉर्गेज की गलबात होएगी, डेट्स की गलबात होएगी और उस तो उपर एस्ट्रोलॉजी की गलबात होएगी। सो स्टे ट्यून, थोड़ा तो साढ़ा साथ 5 to 6 PM तक रेड गोल्ड। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, शाइन विद सोनम, कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।
5: वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम, तुहाडा सब दा स्वागत है। चलो एक खूबसूरत जे गीत दी तरफ चलदे हां। 90s विच जबरदस्त हिट मूवी मैंने प्यार किया, एंट्री ऑफ सलमान खान एंड भाग्यश्री, उसी मूवी दा एक गीत एस पी बाला सुब्रमण्यम मनियम एंड लता मंगेशकर दी आवाज़ विच शाम हो गई है। और जैसे शाम हुई है वैसे ही आप रेडियो को ऑन कर लें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी इस प्रोग्राम में। 416-233-7368 स्टूडियोज़ के नंबर हैं और 416-910-6000 इज़।

जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट में स्वागत है आपका। अगर आपको लग रहा है कि टोरंटो का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बस गिर रहा है तो जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी थोड़ी बदल रही है। अगस्त में जीटीए में करीब 5,057 होम सोल्ड हुए, जबकि नई लिस्टिंग्स पिछले साल की तुलना में लगभग 14% कम रही। एवरेज सेलिंग प्राइस करीब 993,000 रहा, लेकिन यहाँ आता है हिडन फैक्ट। कम सेल्स का मतलब हमेशा कम डिमांड नहीं होता। कभी कभी बायर्स इसलिए भी नहीं खरीद रहे होते क्योंकि उन्हें मार्केट में अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही होती। मतलब आज की कहानी सिर्फ प्राइस ही नहीं, इन्वेंट्री की भी है, और बायर्स के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगस्त में सिर्फ 12,075 न्यू लिस्टिंग्स आई, जो पिछले साल की तुलना में 14.1% कम लिस्टिंग्स है। हिडन फैक्ट में कम सेल्स का मतलब हमेशा कमजोर मार्केट नहीं होता। अगर मार्केट में प्रॉपर्टीज ही कम आ रही हैं, तो बायर्स के पास चॉइसेस कम होती हैं और कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पर कंपटीशन वापस आ सकता है, और यही अगस्त में दिखाई दिया। ट्रेप का बेंचमार्क प्राइस साल दर साल 4.5% नीचे था, लेकिन मंथ ओवर मंथ बेसिस पर बेंचमार्क लगभग फ्लैट रहा, और आज का मार्केट पूरे जीटीए में एक जैसा नहीं है। एक तरफ कुछ सेगमेंट्स, खासकर कॉन्डो, अभी भी प्रेशर में है। बैंक ऑफ कनाडा ने भी टोरंटो कॉन्डो मार्केट में इन्वेस्टर डिमांड और पॉपुलेशन ग्रोथ के बदलते डायनामिक्स को महत्वपूर्ण फैक्टर बताया है। लेकिन दूसरी तरफ लो इन्वेंट्री वाले नेबरहुड्स में अच्छी प्रॉपर्टीज का कॉम्पिटिशन असल कहानी बता सकता है। इसलिए ये कहना कि मार्केट डाउन है या अब मार्केट रिकवर कर रहा है, दोनों ही दो अधूरी तस्वीरें हो सकती हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपने पॉलिसी रेट को 2.25% पर अनचेंज रखा था। साथ ही बैंक ने बताया कि कनेडियन इकोनॉमी ने सेकेंड क्वार्टर में 3.3% ग्रोथ दिखाई, लेकिन इन्फ्लेशन और ट्रेड अनसर्टेनिटी अभी भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब बायर के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना काफी नहीं है, उन्हें देखना चाहिए प्राइस प्लस मॉर्गेज पेमेंट प्लस इन्वेंट्री प्लस लोकेशन प्लस प्रॉपर्टी टाइप। इन पांचों को साथ रख कर ही पिक्चर साफ होती है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई बायर कहता है मैं प्राइस और नीचे आने का इंतजार करूंगा, तो सवाल ये होना चाहिए कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे आया भी तो उस समय अच्छी प्रॉपर्टीज की सप्लाई भी कम होगी और कंपटीशन बढ़ गया तो आप क्या करोगे। यही है आज की जीटीए मार्केट का हिडन गेम। प्राइसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चॉइस। जीटीए की तस्वीर यही है। मार्केट ना पूरी तरह बायर्स मार्केट की कहानी कहती है, ना सेलर्स मार्केट की। ये एक सेलेक्टिव मार्केट है जहां सही प्रॉपर्टी और सही प्राइसिंग बहुत मायने रखता है। सुनते रहें रेडियो गोल्ड। शुक्रिया।

चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं, और हर सितारा एक कहानी कहता है, और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए।

0: views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: अपने घर मुड़ आते ने
2: शिफ्टा ते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आते ने
1: कोई है जो करता है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दिया गल्ला
2: पंजाबी गीता नाल रौनका लगा के थोड़े कम दिया गल्ला
1: वखरा टंग वखरा रंग
2: रेडियो जीदा वखरा अंदाज़
1: सो चज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो रेडियो अंदाज़ सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना नंबर टू कॉल 647-234-6000